0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে মুকেশ কুমাৰ বল। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल D में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

होता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 1-800-144-16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर

0: स्वागत है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगे स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील

0: सील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479817 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
2: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर सेंसस 2027 टू बिगिन टुडे इन लद्दाख एंड आइडेंटिफाइड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ক্ষন্তেক পাছতেই 12 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: पश्चिम

सनी भाई, सबसे पहले तो आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज की कार्यक्रम सूची की। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम संगीत माधुरी, अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे 1:05 पर। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कार्यक्रम गीतमाला 1:10 पर। कार्यक्रम वतन के तराने का वक्त होगा 1:40। दिन के 2 मिड द न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका 2:30 पर। और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी जानकारी आज के प्रसारण सूची की।

दली और एआर रहमान की आवाजों में युवराज फिल्म से गीत के बोल गुलजार के और संगीत एआर रहमान का। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत शान की आवाज में सांवरिया फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म से गीत, बोल है रानी मलिक के और संगीत अनु मलिक का।

सैनिक भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम है संगीत माधुरी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कल की कार्यक्रम सूची के बारे में। कल मंगलवार है और हर रोज की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत हम लेकर आएंगे 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आए। अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे 1:05 पर। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत 1:10 पर।

कार्यक्रम शीर्षक संगीत का वक्त होगा 1:40, दिन के 2 बजे मिडडे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के बाद हम लेकर आएंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन 2:30 पर। रोजाना की तरह कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है शास्त्रीय धुनों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत माधुरी। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अमर प्रेम फिल्म से। बोल है आनंद बख्शी के और संगीत से सजाया है आरती बर्मन ने।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

अब आइए सुनते हैं अगला गीत, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत से सजे बायजू बावरा फिल्म से उस्ताद आमिर खां और पंडित डी वी पलुस्कर की आवाज़ों में।

संगीत माधुरी कार्यक्रम में अभी आपने सुना मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में जनक जनक पायल बाजे फिल्म से गीत। अब आइए सुनते हैं हेमलता की आवाज में ज्योति फिल्म से ये गीत।

इंतजार की घड़ियां बहुत कठिन होती हैं। कितनी बार उठ के दरवाजा खोला और बंद किया, आंखें मूंदी फिर खोल दी, और जब थक गए वक्त गुजर गया तो चराग मध्यम कर दिए। फिर किसी झोंके ने दरवाजे पर दस्तक दी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आपके साथ हूँ मैं जयश्री। सैनिक भाइयों, हम आपको बता दें कि आप हमारे प्रसारण अब से लेकर 1:40 तक आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

अब प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में दो रास्ते फिल्म से, बोल है आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। अभी आपने सुना खामोशी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म से। बोल लिखे हैं मजरूर सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीतमाला आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर और साथ ही आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी। अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मुकेश की आवाज में अनारी फिल्म से। बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिसान ने।

गीतमाला कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं बॉबी फिल्म से शैलेंद्र सिंह की आवाज में गीत बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सनिकभयो, अब आइए सुनते हैं गीतमाला कार्यक्रम का अंतिम गीत, लता मंगेशकर की आवाज में लव इन टोक्यो फिल्म से। बोल है हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिसान का।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है देशभक्ति मूलक गीतों का कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मन्ना दे की आवाज में, काबुलीवाला फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं देशभक्ति मूलक गीतों का कार्यक्रम वतन के तराने। अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में कर्मा फिल्म से ये गीत।

सैनिक भाइयों इसी के साथ होता है अंत कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज आपको सुनवाई फिल्म कर्मा, नया दौर, कबूलीवाला और सैम बहादुर फिल्म से गीत।

0: अभी दिन के 2 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड द न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगी। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के 3rd सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में

0: भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
1: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
3: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
4: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में

तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

शनिभय प्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवाएंगे फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे गीत।

अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गीत। अब आइए सुनते हैं आमिर खान और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छैनिका। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म से गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। और कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपको सुनवा रहे हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म से गीत। इस फिल्म के निर्देशक है मंसूर खान। इस फिल्म के सभी गीतों को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। अभी आपने सुना कुमार सानू और अनु मलिक की आवाजों में गीत। अब आइए सुनते हैं अगला गीत।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गीत। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म से अंतिम गीत उदित नारायण और आदित्य नारायण की आवाजों में।

तो सनी भाई उसी के साथ होता है अंत कार्यक्रम चयनिका। कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज आपको सुनवाई अकेले हम अकेले तुम फिल्म से गीत। अभी वक्त हो चुका है आज के प्रसारण के समापन का। कल होगी फिर मुलाकात कुछ सदाबहार गीतों के साथ। तब तक के लिए जयश्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: सेहत सिर्फ बीमारी से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन को पूरे उत्साह के साथ जीने का नाम है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और मैं हूं आपकी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। एक छोटा सा मच्छर, लेकिन बीमारी का असर बहुत बड़ा। फाइलेरिया ना सिर्फ शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि एक गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है। लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इस बीमारी को रोका जा सकता है। यही विषय हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया की, जानेंगे ये बीमारी कैसे फैलती है, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज और सबसे महत्वपूर्ण इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर एस के रोसानिया, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: शिल्पा जी नमस्कार, और सभी श्रोताओं को भी मेरा हार्दिक नमस्कार।
1: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे फाइलेरिया पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि फाइलेरिया रोग क्या है।
2: देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही ज्वलंत समस्या के ऊपर आज वार्ता करने के लिए बुलाया है यहाँ पर, क्योंकि ये जो फाइलेरियासिस है, ये एक बीमारी है जो हमारे भारतवर्ष के लगभग 20 राज्यों की समस्या है, और 20 राज्यों में भी अधिकतर जो 10 राज्य हैं उसमें ये काफ़ी एक थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस की बीमारी है, कहीं ना कहीं से काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। अब आपने पूछा फाइलेरिया है क्या। बेसिकली फाइलेरिया एक परजीवी रोग है, यानी पैरासिटिक डिजीज़ है, जो कि दो सूक्ष्म कृमि होते हैं जो हमारे शरीर को इफेक्टेड कर सकते हैं, विक्टोरिया बर्नकर्टाई और ब्रूजिया मलाई। मगर से लगभग 94% केसेस में विक्टोरिया बर्नकर्टाई है जो कि हमारे को ये करता है, और ये मच्छरों के काटने से, मच्छर में भी एक खास किस्म का मच्छर क्यूलेक्स जो उससे ये फैलता है। यदि मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं तो ये किसी भी, और वहाँ से ये खून को चूसते हैं, फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को कुछ समय पश्चात, लगभग 2-3 हफ्ते के बाद में, जब वो ये स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसके अंदर ये बीमारी फिर उसके अंदर डाल देते हैं, उसके शरीर पहुँच जाते हैं। और मुख्यतः ये बीमारी जो क्या करती है, हमारे शरीर के लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको अफेक्ट करती है। तो उसके परिणाम भी अलग अलग स्टेज में अलग अलग रूप में होते हैं इसके।
1: तो इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं कि कैसे पता लगेगा कि फाइलेरिया है?
2: देखिए, जब ये मच्छर आपको काटता है और आपके शरीर में, इसको थोड़ा लाइफ साइकिल समझने की थोड़ा जरूरत है कि लाइफ साइकिल क्या है, जो ये फाइलेरिया की लाइफ साइकिल क्या है। हमारे शरीर के अंदर जो फाइलेरिया, एडल्ट माइक्रो फाइलेरिया जो होता है, उसका जो मेल और फीमेल होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, और फिर फीमेल जो माइक्रो फीमेल फाइलेरिया पैरासाइट है, वो जब काफ़ी सारे माइक्रोफाइलेरिया रिलीज करता है, वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं, और उसको ही जब कभी क्यूलेक्स मॉस्किटो सक करता है, फिर क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है उस माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का, और फिर वो थर्ड स्टेज लार्वा जब उसमें डेवलप होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर, वो जब किसी मनुष्य को काटता है तो वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और यूजुअली इस पूरे प्रोसेस में जो मच्छर के अंदर लगभग 2-4 हफ्ते का समय लगता है, जिसमें ये

0: वो इसको इफेक्ट करता है, मगर मनुष्य में जब ये वापस माइक्रोफाइलेरिया थर्ड स्टेज लार्वा इंजेक्ट करता है, उसके इंजेक्ट करने से और उसके बीमारी के डेवलप होने में कभी कभी 6 साल, कभी 8 साल, कभी 10 से 12 साल तक लग सकते हैं। तो तुरंत आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या आपको हुआ, मगर प्रारंभिक अवस्था में जब कोई शुरुआती लक्षण जो होते हैं, इसमें बुखार हो गया, हाथ पाँव में दर्द हो गया, जहाँ पूरे शरीर में हल्की सी सूजन हो सकती है, और लंबे समय तक यदि रहेगा, खासतौर से जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम है जहाँ पे आप लसीका तंत्र होता है, उसमें एक दर्द रहेगा उसके अंदर, उसमें एक आपको लगेगा कि हाथों में या कहीं पैरों में पूरा जो सिस्टम है वहाँ लाली सी आ जाएगी, और बाद में ये वो अवस्था है जब आपका लिम्फेटिक सिस्टम इफेक्टेड हो गया। एक दूसरा फाइलेरिसिस था, उसको बोलते हैं ओकल्ट फाइलेरिसिस, वो कहीं ना कहीं उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम, हमारे सांस से संबंधित समस्या ज़्यादा होती हैं, जिसमें यूसिनोफिलिया हो जाएगा, आपको दमे जैसा अवस्था होगी, सांस फूलने लगेगी, वो ऑकल्ट फाइलेरिसिस बेसिकली वो शुरुआती लक्षण है, मगर बाद में जब विकराल रूप हो जाएगा उसका, तो विकराल रूप में क्या होगा कि वो हमारे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, लसीका तंत्र के विभिन्न नलिकाएं जो होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी अवस्था से उसमें बाद में हाइड्रोसील अंडकोशों में वृद्धि हो सकती है, या किसी महिला के जननांग या किसी पुरुष के जननांग में सूजन आ सकती है, हाथ पैर सूज सकते हैं, और बहुत ही गंभीर अवस्था होती है इसमें, बोलते हैं एलिफेंटियसिस, हाथी पांव, आपने देखा होगा कई दफे पैर बहुत मोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल पैर में एक फफोले से पड़े हुए हैं, या फफोले नहीं मतलब पूरा ऐसा लगता है खाल बहुत मोटी हो गई है, वो अवस्था पहुंच जाती है एलिफेंटियसिस। आपने देखो कई बार स्टेशन पे कुछ लोग उसको एक गलत रूप में इस्तेमाल करते हैं उस बीमारी को, भीख मांगने के लिए या किसी और चीज के लिए, मगर वो एक ऐसी स्टेज है कि वो अवस्था तक पहुंच गया तो फिर वो थोड़ा लाइलाज हो जाता है, उसका इलाज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एलिफेंटियसिस का, ये इसके लक्षण इस रूप में होते हैं विकरालता के हिसाब से।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया पर, इस पर बातें हम और भी करेंगे, जानेंगे इस बीमारी के इलाज के बारे में और ये क्यों हो जाती है, क्या है इसके बारे में। इससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के रसानिया, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम फाइलेरिया पे बात कर रहे हैं तो इसके लक्षण के बारे में आपने बताया है, तो क्या इसके लक्षण तुरंत दिखाई देते हैं या कुछ देर बाद दिखाई देते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था, जैसे कि अभी आपने बताया कि उसमें लक्षण होते हैं, कहीं सूजन हो गया या फिर लालिमा टाइप का हो जाता है, तो मेरा ये सवाल है कि मलेरिया और फाइलेरिया दोनों का कुछ सिम्टम इसी टाइप से रहता है क्या, उसमें कैसे हम लोग मालूम चल जाएगा कि ये फाइलेरिया हुआ है या मलेरिया हुआ है।
2: आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम अमित उपाध्याय है,
2: हम बिहार से बोल रहे हैं। अमित जी नमस्कार, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए ये जो बरसात का मौसम है ना, इस मौसम में विभिन्न प्रकार के बुखार होते हैं, उसमें मलेरिया भी हो सकता है, फाइलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है। आपका प्रश्न था मूलतः कि मलेरिया और फाइलेरिया के बुखार में अंतर क्या होगा। देखिए मलेरिया का जो बुखार होता है ना, उसमें अमूमन क्या होता है कि जाड़ा देकर बुखार आता है, बिल्कुल कपकपी आएगी, हाथ पैर में एकदम बहुत भीतर ठंड लगेगी, रजाई उड़ाएंगे बहुत ज़्यादा उसको, और फिर अचानक से उसको बहुत तेज बुखार आएगा, और फिर जब बुखार आएगा तो खूब सारा पसीना निकलेगा, और उसके बाद में कहीं जाके फिर वो लगभग 2-3 घंटे का ये पूरा साइकिल होता है। इसको 3 स्टेज होती हैं कि कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। तो ये मलेरिया में यूजुअली इस तरह की चीज़ होती है। फाइलेरिया में क्या है कि जब ये जो लक्षण है ये इस तरह के क्लियर कट लक्षण इस तरह के नहीं है, इसमें बुखार भी आएगा, उसमें पूरे शरीर में दर्द थोड़ा सा हो सकता है, मतलब इतना दर्द नहीं होगा, मगर कहीं कहीं कहीं ना कहीं जो आपको बुखार होगा उसमें हाथ पांव में दर्द, हल्की सूजन, जहां पर आपको जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे आपका बगल की कांख हो गई या आपकी जो जांघ की गिल्टी हो गई, वहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो सकता है, तो इस तरह की चीज़ें होंगी फाइलेरिया के अंदर, मगर वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की स्टेज। यूजुअली अब आपका कुछ प्रश्न था, आप इसमें कुछ पूछा।
0: हाँ जी, मैंने पूछा था कि इसके लक्षण तुरंत दिखाई देते हैं, कुछ दिनों बाद दिखाई देते हैं।
2: यही मैं इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाते हुए जवाब देना चाह रहा हूँ कि यूजुअली क्या होता है कि जो सिम्टम इतनी जल्दी इसके नहीं आते हैं, क्योंकि जो आपको मच्छर ने काटा और उसके सिम्टम आने तक, इसके सिम्टम आने में कई दफ़े 5 साल, कभी 6 साल, कभी 8 साल तक लग सकते हैं, तो तुरंत इसका कुछ मालूम नहीं पड़ता, मगर धीरे धीरे अंदर कहीं वो फाइलेरिया का जो लार्वा है वो कहीं ना कहीं आपको जो लिम्फेटिक सिस्टम है, आपके जो शरीर का लसीका तंत्र है, उसको प्रभावित करता है, और यूजुअली धीरे धीरे धीरे धीरे अल्टीमेटली वो स्टेज आती है कि उसमें क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन ग्रुप में कई अलग चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया हाथी पाँव या इस तरह के लक्षण आ जाएंगे, हाइड्रोसिलाई, मगर वो जो लक्षण आ जाते हैं फिर वो इररिवर्सिबल होते हैं, यूजुअली उसके अंदर फिर परिवर्तन नहीं आता है, फिर वो एक फिक्स हो गया, वो आपके जो डेवलपमेंट हो गया, जो आपका हाथी पाँव यदि हो गया तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में काफ़ी डैमेज कर देता है, वो स्टेज आ जाती है।
0: जी एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: जी, नमस्कारम।
0: नमस्कारम, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: फाइलेरिया, हाथी पाँव, फील पाँव, इसके वैक्सीनेशन के बारे में कृपया विस्तार से बताएं, धन्यवाद।
2: जी गौतम जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, मगर अफसोस ये है कि इसका वैक्सीनेशन फिलहाल नहीं है कोई भी, और इसमें जो अभी फिलहाल ये है कि इसकी इसके लिए जो दवाइयां ही इतनी प्रभावी हैं, यदि उसको दवाइयों को यदि आप लिया जाए तो वही इसका इतना प्रभाव देती हैं कि वो आराम से इसका इलाज हो सकता है, और इसमें वैक्सीनेशन का भी फिलहाल कोई है नहीं हमारे पास में अभी इसको कहीं। जी
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका, इनके दो प्रश्न हैं। ये लिखते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस वन कैन टेक फॉर फाइलेरिया एंड हाउ इट इज डायग्नोस्ड एंड व्हाट्स द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इट।
2: आपने सागर जी, प्रश्न क्या है बेसिकली, आपका पूरा कार्यक्रम ही आपने पूरा समेट लिया अपने प्रश्न के अंदर। आपका पहला प्रश्न है कि, चलो मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, शुरुआत से लेता हूँ, डायग्नोसिस। देखिए डायग्नोसिस जो उसका कैसे कर सकते हैं, इसमें इसके अंदर एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ यह है कि जो माइक्रो फाइलेरिया का जो लार्वा होता है ना, माइक्रो फाइलेरिया जो शरीर में निकलते हैं, जो जब ये दोनों मेल फीमेल लार्वा जो हमारे शरीर में होते हैं और जो बड़े हो जाते हैं, इसके अंदर फिर माइक्रो फाइलेरिया कई सारे डेवलप होते हैं इसके अंदर, इनका एक खास चीज़ होती है, मतलब कुदरत को एक, मैं वाकई में एक चीज़ कई सारी चीज़ मानता हूँ कि कुदरत बहुत ही अजीब चीज़ है, वो हर चीज़ हर किसी का ध्यान रखती है, ये कि मच्छर रात के समय काटता है और इसको माइक्रोफाइलेरिया की अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी है तो वो माइक्रोफाइलेरिया के लार्वा जो है, माइक्रोफाइलेरिया जो निकलता है वो भी रात के समय ब्लड में आएगा। रात के समय 10 बजे से लेकर रात के 2-2.5 बजे तक वो ब्लड में आता है। मतलब कितना सामंजस्य आपस में है कुदरत का कि वही उसी टाइम में वही समय है जबकि रात को मच्छर काटेगा तो वो उस टाइम ही, तो उसको हम बोलते हैं कि यूजुअली इसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करके नाइट ब्लड सैंपल लेते हैं जब कोई डायग्नोसिस करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको रात में तो किसी को जांच नहीं, रात में तो कोई आएगा नहीं जांच करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं कई दफे दिन में यदि जांच करनी होती है तो एक गोली होती है वो उस गोली को खिला के वो सारे माइक्रोफाइलेरिया जो होते हैं वो ब्लड में निकल आते हैं, फिर आप खून की जांच करके उसको जांच कर सकते हैं। मगर अभी नई नई तकनीक भी आ गई हैं जिसमें कि हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या स्ट्रिप टेस्ट के माध्यम से हम वैसे दिन के समय भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये तो हो गया डायग्नोसिस की बात। दूसरा है प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन बरत सकते हैं। देखिए ये बीमारी तो जब है कि मच्छर के काटने से होती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो सकती, मगर ये इसके लिए मच्छर की बीच में उपस्थिति आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, अगर आप मच्छर ही ना पैदा होने दें तो जाहिर सी बात है बीमारी का समूल नाश हो सकता है। बल्कि इसी बीमारी का नहीं, क्योंकि ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में
0: कई बीमारी
2: होती हैं। मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, एडीज हो गया, और सब ये एडीज क्यूलेक्स एनोफ्लीज जितने मॉस्किटोज हैं ये सब विभिन्न प्रकार के मच्छर पैदा होते हैं। तो यदि हमारा उद्देश्य हो कि मच्छर को पैदा ही ना होने दें, अगर ये उद्देश्य हो तो हम कई सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो कृपया करके पहली चीज तो यह है कि बिल्कुल कहीं भी जहां कहीं आप पानी खट्टा देखें, जहां कहीं देखें पानी खट्टा है, गंदा पानी, क्यूलेक्स मॉस्किटो का एक खास चीज है ये गंदे पानी में पैदा होता है। गंदा पानी मतलब कि जो गटर का पानी है, नाली है, उनमें पैदा होता है ये जो मच्छर है। तो कहीं भी यदि आपको लगता है कि नाली में पानी खट्टा है उस पानी को बहा दें, या कहीं भी आपको वगैरह पानी कहीं दूसरी जगह इकट्ठा है तो उसको भी आप देखें पानी की जितना हो सके पानी गंदे पानी को वहां इकट्ठा ना होने दें। तो कोशिश करें कि मच्छर पैदा ना हो। दूसरी तरीका हो सकता है कि आप अपना पर्सनल प्रोटेक्शन, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से कैसे अपने आप अपना बचाव कर सकते हैं। अब बड़ा मतलब वैसे तो बड़ा अजीब लगता है कि बरसात के मौसम में यदि आपसे कहा जाए कि पूरे शरीर ढककर रखिए अपना, कि बरसात के मौसम में वैसे आर्द्रता बहुत होती है, नमी बहुत होती है, उस समय पसीना भी बहुत आता है, मगर यदि आप अपने पूरे शरीर के अंगों को ढककर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और नीचे मोजे तक अपने पहने कपड़े पड़े पहने ताकि आपको मच्छर काटने ना पाए, तो कहीं ना कहीं उसका, या दिन में कभी आप मौका लगे तो अपने जो मॉस्किटो को भगाने वाली क्रीम होती है वो लगाकर रखें। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। हमें याद है बचपन में बिना मच्छरदानी के रात को हम सोते नहीं थे, मगर अभी वो एक फैशन कह लो क्या कह लो वो सब खत्म हो गया है मगर कहीं ना कहीं मच्छरदानी का उपयोग यदि करते हैं तो आप मच्छर काटने से बच सकते हैं। तो तीसरी चीज यह है कि आप अपने, और फिर चौथी चीज है कि विभिन्न प्रकार की चीजें आजकल बाजार में उपलब्ध हैं जो मच्छर को भगा सकती हैं, और आप सरकारी एजेंसीज को बोल सकते हैं कि वो आपके घरों में आकर, क्योंकि ये मच्छर जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मच्छर जो है ये घर के अंदर रहता है, घर के अंदर रह के काटता है, तो कहीं ना कहीं, और जो रहता भी तो घर के अंदर ही रहता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सरकारी एजेंसियों को बोलेंगे तो आपके घर में आके इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, DDT या कुछ भी आपके घर में जो स्प्रे कर सकते हैं, या इंसेक्ट पायरेथ्रल इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं वाके स्प्रे कर सकते हैं और उसका इफेक्ट काफी समय तक रहता है, तो आप उनको बोल सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं मच्छर आपके घर पर नहीं होंगे। तो दूसरी चीज होगी प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन बरतें। तीसरी चीज आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब सागर जी ने पूरे प्रश्न में अपने प्रश्न में पूरे कार्यक्रम का सार समूह दिया है, सागर बन गया है उनके प्रश्न। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, देखिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यह है कि इसके अंदर बहुत ही साधारण सी दवाइयां सरकारी

0: अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध हैं, और वो उसको नियत समय तक, नियत दिन में दो बार या तीन बार, इसमें दो या तीन तरह की गोलियां होती हैं, ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कौन सी गोली देते हैं और आप किस इलाके में आते हैं। ऐसे इलाके में जहां पर दो गोलियों वाले दो गोलियां देनी है, या कोई इलाका जहां पर तीन गोलियां देनी है, उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है और कितने समय दे देनी डॉक्टर आपको बताएंगे। और मगर इसमें एक और चीज है, कहीं ना कहीं इसमें एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चल रहा है वो कार्यक्रम का महत्व बहुत है, जिसमें हम बोलते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि सर्व जन दवा सेवन, ताकि सभी लोग एक साथ उस दवा को लें। मगर वो ये जो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हर जगह नहीं है, जहां जहां इसका विकराल रूप है, जहां जहां एक पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस इसका है इस बीमारी का, तो वहां पर इसमें ये दवाइयां विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा दवाई दी जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इसके बारे में हमें बताया, एमडीए के बारे में, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें और बताइए कि इससे कैसे बचाव के लिए ये अभियान है सरकार द्वारा, और इसे कैसे बचा जा सकता
0: है। जी जी जी, मैं मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि मैंने इसमें काफ़ी जगह मैं इसमें गया हूँ और बहुत जगह मैंने इसके अंदर काम किया है मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं इसका एक ये जो कार्यक्रम है ना, इसमें मुझे एक चीज़ वाकई में एक लगता है कि हमारे जो ग्राउंड लेवल पे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आशा बहनें, कितना काम करती हैं। मैंने ये देखा वाकई में बिल्कुल जमीनी स्तर पर, जिस तरह से बेचारी काम करते हैं सभी लोग, मतलब जो आपका मेडिकल ऑफिसर से लेकर मलेरिया ऑफिसर से लेकर, और जो विभिन्न एजेंसियां जो काम करती हैं इसके अंदर, ये सिर्फ साल में दो बार, पहले साल में दो बार होता था कि जो नेशनल डिवर्मिन डे, जिस दिन एक राष्ट्रीय कृमि रोग निदान दिवस मनाया जाता था, जिसमें कि जो पेट में कीड़े होते हैं उसके लिए एक दवाई दी जाती थी, 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये दी जाती थी, उसी के साथ मिलाकर ये उन्हीं दोनों के साथ में ही दो बार ये प्रोग्राम चला है, जिसमें सर्वजन दवा सेवन का प्रोग्राम किया था कि सभी को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एल्बेंडाजोल जो गोली दी जाती है, जो कीड़ा मार की दवा थी, इसमें साथ में इसकी फाइलेरिया की दवा भी साथ साथ में देने का प्रोग्राम इसमें शुरू किया है। इसमें एक चीज यह है कि ये सिर्फ उसी दिन नहीं होता, इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू करते हैं बेचारे, ये जितनी आशा वर्कर्स हैं बहुत पहले से इसकी तैयारी करती हैं। पहले वो घर घर जाकर देखती हैं कौन कौन, सभी का एक लिस्ट बनाती हैं, परिवार सहित पूरे गांव के लोगों की, कौन कौन है, कौन कौन रह रहा है यहाँ पर, किस किस को बीमारी है, किस किस को आपका फाइलेरिया की बीमारी संभावित हो सकती है कि नहीं, किस किस को एलिफेंटिस हाथी पांव है, किसी की हाइड्रोसील है, या किसी कहीं ब्रेस्ट में कहीं स्वेलिंग है, वो सब पूरा एग्जामिन करके सब कुछ पूरी लिस्ट बनाती हैं, वो सारा कुछ करती हैं। और फिर एक खास नियत दिन, यानी कि जो जिस दिन डिवर्मेंट डे होता है, तो उसी दिन ही घर घर जाकर, डिपेंड करता है कि वो एरिया आपका, वो जिसमें दो गोलियां देनी वाली होती हैं या जिसमें तीन गोलियां देनी है, वो उसमें आता है कि नहीं आता, फिर घर घर जाकर उन सबको अपने सामने दवाई खिलाती हैं वो। ये इसमें खास तौर से ये चीज़ जरूरी है कि ऐसा नहीं कि घर में अगर चार लोग हैं, चार में दो अगर काम पर रहे हैं तो उनकी दवा घर में रख दो, घर में वो बाद में खा लेंगे, नहीं, वो वहीं अपने सामने दवा देती हैं वो दवाई, और यदि वो नहीं है तो शाम को उसके घर में दोबारा जाती हैं बेचारी आशा बहनें, और तब तक जब तक कि वो पूरा आपका साइकिल पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ये मैंने इतना जो लोगों का इसके अंदर रुझान और इतना ज़्यादा सेवा भाव जो मैंने देखा, मैं कई जगह गया हूँ इसके लिए, पीलीभीत, कानपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, रायपुर, महासमंद, नर्मदा, भरूच, डांग, शहडोल, उमरिया, पता नहीं कितनी जगह पर जाके मैंने देखा मैंने, मगर आशा बहनों का जितना मैंने योगदान इनका देखा, और जो बेचारे दिन रात मेहनत करके इतना काम करते हैं, बाकी मैं सल्यूट करता हूँ सबको। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है इसमें इस आशा बहनों का बहुत बड़ा योगदान है इसको सफल बनाने में। जी
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि घर घर जाके वो पूरी लिस्ट बनाती हैं, दवाइयां देती हैं, तो जैसे हमारे श्रोताओं ने भी पूछा था वैक्सीनेशन के बारे में, तो कोई ऐसी दवाई नहीं कि इंसान पहले ले ले तो ये हो ही ना, या जिनको है उनको ही दवाई दे के तभी वो क्योर हो सकते हैं?
0: नहीं, अब इसमें एक चीज और आती है, कि क्या ये दवाई सिर्फ उनको देनी है जिनको बीमारी है।

0: ना, ये सभी को चाहे बीमारी है कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब किसी को मच्छर ने काट, अब एक गांव में कोई व्यक्ति है जिसको कि फाइलेरिसिस है, अब मच्छर ने उसको काट लिया, क्यूलेक्स मच्छर ने काट दिया, अब उसने किसी और को काटा, तो जरूरी नहीं कि उसको सिम्टम तो नहीं अपीयर हुए किसी व्यक्ति को, उसको तो 6 साल 7 साल 8 साल लग सकते हैं समय तो अपीयर होने में। तो ऐसा नहीं कि कोई सिम्टम शुरुआत में नहीं है, मगर जो व्यक्ति को उसने काट लिया और कहीं ना कहीं उसको माइक्रोफाइलेरिया उसके शरीर में डेवलप हो गया, उसको साइन या सिम्टम कुछ अपीयर नहीं होंगे उसके अंदर, मगर वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज, मच्छर उसको काट के दूसरी बीमारी को फैला सकते हैं। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति दिखने में स्वस्थ लग रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर माइक्रोफाइलेरिया नहीं हो। तो इसीलिए ये जो माइक्रो जो भी ये दवाई मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, इसमें सभी व्यक्ति जो उस इलाके में हैं, चिन्हित हैं, कोई भी जितने भी लोग रह रहे हैं वहां पे, चाहे वो स्वस्थ है या रोग से ग्रसित है, सभी को ये दवा देनी होती है। मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ ये गोलियां ही इसका इलाज है, मगर वह भी वैक्सीन फिलहाल नहीं है।
1: जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया पे। तो डॉक्टर साहब, आपने इसके बारे में हमें बताया। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी, इस नाचीज को राजेंद्र कहते हैं और 48 वर्ष मेरी उम्र है।
1: और कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी, करमपुरा।
1: अच्छा जी, बताइए।

0: ये राजेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका?
1: हाँ, पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर सर दोनों को गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून,
2: नमस्कार।
1: हाँ, तीन मेरे सवाल हैं और एक मेरा मिथ है। पहला सवाल मेरा ये है कि हिंदुस्तान में तीन मौसम की छह ऋतु पाई जाती है बारह महीने। अब मेरा सवाल ये है कि मौसम किस ऋतु में है? फालेरिया जो है और भी मच्छर जो होते हैं वो नहीं मिलते, कम से कम मिलते हैं। दूसरा सवाल की साफ सफाई के साथ साथ हमें अपने घर में एसी, कूलर या पंखा ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें इस मच्छर से हमें निजात मिले या कमी आए। और तीसरा मेरा मिथ ये है कि मैंने सुना कि इलाकों में फर्नीचर का ज्यादा काम होता है लकड़ी का, वहाँ जो है किसी भी किस्म के मच्छर जो है वो नाके बराबर मिलते हैं। और चौथा और आखिरी सवाल यह कि एक मुल्क है फ्रांस कंट्री, तो वो तो मच्छर क्या बला हो
2: तो। राजेंद्र जी नमस्कार, आपका प्रश्न कई सारे एरिया को कवर कर रहा है। तो आप दिल्ली करमपुरा से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने बोला कि जो हमारी छह ऋतु होती हैं तो कौन सी ऋतु में ये मच्छर ज्यादा होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका थोड़ा साफ नहीं आ रही थी जहां तक मैं समझ पाया, जितना मैं समझ पाया उसमें ये समझ पाया कि ये किस ऋतु में ज्यादा होता है। देखिए, जितने भी मच्छर हैं ये सब वर्षा ऋतु की देन होते हैं, और वर्षा ऋतु और वर्षा की ऋतु के बाद का समय, क्योंकि उस समय टेम्परेचर, तापमान प्लस आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ये दोनों को दोनों मच्छरों को पैदा करने के लिए बहुत ही उपयोगी समय होता है उनका। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें, जो तापमान और आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, दोनों उनके बड़े फेवरेबल पॉइंट होते हैं, प्लस पानी तो इकट्ठा ही है। तो इसमें हर तरह का मच्छर, चाहे वो एनोफिलीज हो, चाहे एडीज हो, चाहे एक्यूलेक्स मॉस्किटो हो, जो कि मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू कर, बेसिकली कोई भी मच्छर पैदा करने का बहुत ही अच्छा मौसम होता है ये। और आपने बोला साफ सफाई, जाहिर सी बात है साफ सफाई तो हर चीज़ का इलाज है। साफ सफाई अगर होगी तो आपका एक लास्ट वाला प्रश्न है, फ्रांस में इस सब बीमारी क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ सफाई ही एक सब चीज का इलाज है। यदि हम अपना घर और अपने घर के आसपास के इलाके को पूरी तरह साफ सफाई रखेंगे तो जाहिर सी बात है मच्छरों वाली बीमारी नहीं, बहुत सारी मक्खियों वाली बीमारियां, गंदगी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां आपके आसपास कहीं नहीं होंगी। फिर आपने कहा था कि एसी कूलर, देखिए एसी कूलर का इससे मच्छरों से ऐसा कोई वैसा असर नहीं है, मगर कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है बाहर और घर में एसी या कूलर चल रहा है तो कूलर में भी मच्छर पैदा हो रहा है और एसी की ठंडक आपके घर में ठंडक पैदा कर रही है, तो बाहर का इतना विशाल और इतना गहरा टेम्परेचर, बहुत ही ऊंचा तापमान यदि है तो मच्छर को भी तो आराम करने के लिए एक तापमान मिल सकता है ना, घर के अंदर आ जाएगा वो, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए मगर ये सब एसी कूलर का रोल ये रहता है आपको इसमें, ठीक है। आपने बोला लकड़ी का, मुझे लकड़ी वाला प्रश्न क्या था आपको, वो थोड़ा मेरे सुनिए आप क्या कह रहे थे, क्योंकि आवाज थोड़ा
0: इनको एक मिथ है कि जहां लकड़ी का काम होता है वहां मच्छर कम होते हैं।
2: नहीं, ऐसा कहीं मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि लकड़ी के काम होने पर जाऊंगा तो मच्छर नहीं होंगे, ऐसा कहीं मेरी जानकारी में नहीं है जी।
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया पे, तो ये इसका असर किन बॉडी पार्ट्स पर ज्यादा असर आता है इसका?
2: जी देखिए, मैंने जैसा पहले बोला था ना शिल्पा जी, कि जो फाइलेरिसिस, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस होता है, यूजली हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, लसिका तंत्र को इफेक्ट करता है। हमारे शरीर का जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, जो कहीं ना कहीं वो क्योंकि जो एडल्ट पैरासाइट होता है ये इन सब जो हमारे लसिका तंत्र की नलियां होती हैं उनमें कहीं जाकर लॉज कर देता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे उनको फ्लूड बैलेंस को और इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो प्राइमरीली जो अफेक्टेड एरिया होते हैं ये, एक तो लिम्फ चैनल्स हैं हमारे लसिका तंत्र की जो नालियां हैं उनके अंदर है, प्लस लिम्फ नोड्स, और प्लस उसकी वजह से जो आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यू है उस पर उसका असर आता है। तो उसके असर की वजह से क्या होता है कि लिम्फेडिमा, जिसे हम बोलते हैं कि हमारे सूजन आ जाती है हाथ में, पैरों में, या शरीर के कुछ अंग हैं जैसे आपका अंडकोश में वृद्धि हो सकती है, या कहीं ना कहीं जननांगों की तरफ वृद्धि हो सकती है, महिलाओं में स्तन के अंदर कहीं सूजन आ सकता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की, और बहुत ही विकराल रूप में एलिफेंटेसिस या हाथी पहुंच से हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपके जो जांघ के पूरा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो पूरा ब्लॉक कर देते हैं, तो पूरा नीचे तक वो पूरा सूजन आ जाती है। और वो सूजन शुरू में तो तब भी थोड़ा सा पैर ऊपर करने में थी सूजन का असर कम हो सकता है, मगर बाद में एक स्टेज ऐसी आती है कि जो खाल होती है शरीर की, जो खाल है पैरों की खाल, बहुत मोटी हो जाती है, उसमें जो आपने कहीं देखा होगा लोगों को जो कई दफ़े

0: स्टेशन वगैरह पे, कई जगह कुछ लोग भीख भीख मांगते हुए कई जगह मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत पैर इतना मोटा होता है जैसे हाथी जैसा हो जाता है। और पुरुषों में हाइड्रोसील हो सकता है, उनके अंडकोश में वृद्धि हो सकती है, उसमें कहीं पानी भर सकता है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये इसके विकराल रूप और इस तरह के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकता है।
1: तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है?
0: देखिए इलाज जैसे मैंने आपको बताया, इलाज वही है, दो या तीन गोलियां जो सरकारी सिस्टम में फ्री मिलती हैं। डिपेंड करता है कौन सी इलाके में, यदि आपका वो इलाका है जहां पे बहुत ही विकराल रूप है तो वहां पर तीन गोलियां भी चलते देते हैं। और गोली बहुत सिंपल है, DEC, एल्बेंडाजॉल और आइवरमेक्टिन। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि लोबाग और ये सब सरकारी सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं फ्रीली। तो आप उसको, और जब जिस दिन जिस

0: यही क्योरेबल है।
1: नहीं, यही है कि यदि एक बार एलिफेंटेसिस हो गया, यदि पैरों में सूजन एक बार आ गई, तो वो एक ऐसी चीज हो जाती है कि वो थोड़ा सा काफी समय तक रहती है, और फिर वो एक बार आती है तो जाती नहीं है। और यही एक चीज है जो इसके साथ में कहीं ना कहीं एक हमारे बोलते हैं हम स्टिग्मा के रूप में देखते हैं, कि कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत जो पर्सनल प्रोडक्टिविटी है उसको इफेक्ट करती है। सोशली आप कहीं ना कहीं आइसोलेट अपने आप को फील महसूस करते हैं, तो ये सब चीजें कहीं आपको मानसिक रूप पर भी आपको आप पर आप पे परिवार पर उसका असर आता है। तो क्यों हम ऐसी अवस्था तक पहुंचे, तो इसलिए बचाव ही इसका इलाज है, और बचाव ही सबसे बड़ा इसका वह है। जी
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा था कि दवाइयाँ घर घर जाके देते हैं, वैक्सीनेशन नहीं है, दवाइयाँ ही इसका समाधान है, उसी से इसका बचाव हो सकता है। तो कभी कोई बच्चा ले या यंगस्टर्स ले या बुजुर्ग ले, तो क्या इन दवाइयों का को कोई साइड इफेक्ट्स भी है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न। पहले तो एक और चीज है, ये दवाइयां कुछ विशेष वर्ग है उनको नहीं देते हैं, बस उसमें खासतौर ध्यान रखते हैं कि तो दो वर्ष से कम के बच्चों को नहीं देते हैं, गर्भवती महिलाओं को नहीं देते हैं, या कोई बहुत ही सीवियर गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है जो बेचारा बिस्तर पर पड़ा हुआ, या किसी को ऐसी दवाइयां चल रही हैं जो कि उसके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को इलाज के लिए हैं, उनके लिए। जहां तक आपने बोला कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, साइड इफेक्ट इससे कोई नहीं है। जो साइड इफेक्ट यूजली अमूमन कई सारी गोलियों को होता है कि हल्का सा जी मिचला सकता है या कुछ हो सकता है, मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि, और ये बात सही भी है, कई दफे क्या होता है गोली खाने के बाद में जिन लोगों के शरीर में माइक्रो फाइलेरिया है, ये दवाई का असर होने पर माइक्रो फाइलेरिया जब शरीर में मर जाता है, उसको उसकी वो माइक्रो फाइलेरिया खत्म हो जाता है, उस माइक्रो फाइलेरिया के कहीं उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन कई दफ़े शरीर में हो सकता है, उसमें कई दफ़े हल्का सा फीवर या इस तरह के रैशेज या कहीं उल्टी उल्टी आ सकती है। एक जगह हम गए थे जब सर्वे चल रहा था, तो उस टाइम में एक बच्ची थी, उसको अचानक से उल्टी उल्टी शुरू हो गई और रैशेज बॉडी में आ गए, तो सारे लोग नाराज हो गए कि दवाई क्यों, ये दवाई से तो ये हो गया। तो उनको समझाना पड़ा हमें कि ये जो माइक्रो फाइलेरिया जब खत्म होता है तो उसके जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, बल्कि ये तो अच्छा हुआ कि आपको मालूम पड़ गया कि आपके शरीर में था, आपको आप वैसे स्वस्थ थे, मगर आपको जब ये गोली खाई उसके बाद में एकदम ये सब चीजें हुई, इसका मतलब आपके शरीर में कहीं ना कहीं माइक्रो फाइलेरिया था, उपस्थित था, अब वो कहीं खत्म हो गया, तो उसका जो रिएक्शन हुआ तो उसकी वजह से ये सब अच्छा ये सब हुआ है। तो अगर इस तरह की कोई चीज होती भी है तो उसको एक पॉजिटिव वे में सोच के चलिए कि ये हमारे शरीर की बीमारी खत्म हुई है उसका असर है। तो कहीं कभी यदि कोई थोड़ा हल्का बहुत बुखार, सर दर्द या शरीर में दर्द, या थोड़ा सा हल्की सी जी मिचलाना, उल्टी या चक्कर वगैरह है, तो ये नॉर्मल चीज है, कहीं इसको इसको गलत वे में कहीं नहीं लेना चाहिए। जी
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: रतवीर सिंह, गांव बिगान, जिला सोनीपत, हरियाणा से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये है मैम, क्या मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा में भी ये फाइलेरिया की बीमारी?
1: देखिए जसवीर सिंह जी, आप थोड़ा लकी हैं कि उस तरफ ये बीमारी नहीं है। हमारे जो कुछ हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट जहाँ जो हैं, मैं आपको कुछ राज्यों के नाम बता देता हूँ जहाँ पर ये बीमारी काफ़ी है, जैसे कि बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उधर इवन गुजरात, ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये बीमारी है थोड़ा सा काफ़ी। वैसे लगभग 20 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर ये बीमारी है, मगर ये जिनका मैंने नाम लिया उन जगहों पर काफ़ी थोड़ा इसके अंदर काफ़ी पब्लिक हेल्थ थोड़ा रूप में इसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है इन इन इलाकों में, मगर हाँ हरियाणा थोड़ा सा बचा है। जी
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं डॉक्टर साहब और शिल्पा मैम को गुड आफ्टरनून।
1: गुड
0: आफ्टरनून जी, ये लिखते हैं महिलाएं जो परिवार की धुरी होती हैं, उन्हें बच्चों और पति और परिवार और बुजुर्गों को भी देखना पड़ता है, तो उन्हें फाइलेरिया की रोकथाम के लिए क्या सलाह देंगे? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड से।
1: नरदेव सिंह जी, देखो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखो महिलाएं तो जाहिर सी बात धुरी हैं, उनके बिना तो कोई घर चल ही नहीं सकता, बिल्कुल उसमें दो राय नहीं। वो कैसे अपने आप को और अपने परिवार को कैसे बचा सकती हैं? सबसे पहली चीज तो ये कि अपने घर के आसपास, घर के अंदर और घर के आसपास सफाई रखें, मच्छरों को पैदा ना होने दें बिल्कुल भी। यदि सुबह और शाम, खास सुबह और शाम का समय एक ऐसा समय होता है जो कि मच्छर के आवागमन काफी होता है, कुछ मच्छर जो बाहर वाले होते हैं अंदर आते हैं, अंदर वाले बाहर जाते हैं, तो ये दो समय होते हैं सुबह और शाम के समय। सुबह और शाम के समय अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें, हो सके तो खिड़की दरवाजे में जालीदार खिड़की, जालीदार दरवाजे लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि घर में छोटे बच्चे सोते हैं रात के समय

0: तो उनको पूरा मच्छरदानी में सुलाएं, अब बच्चों को सभी लोग मच्छरदानी में सोएं, या कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो आजकल कई सारी क्रीम वगैरह आती हैं या कुछ प्लगीज आते हैं जिसमें लगा के आप घर में लगा सकते हैं ताकि मच्छर घर में ना हो। और अगर बच्चे कहीं बाहर खेलने जा रहे हैं तो बच्चों को कपड़े पूरे पहनाएं, आस्तीन पूरी आस्तीन वाले पूरे शरीर में ढके हुए ऐसे कपड़े पहनाएं, या उनको ऐसी क्रीम लगाएं जो ताकि मच्छर उनको ना काटे, ये थोड़ा ध्यान रखें। और साथ में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और घर वालों की सेहत का भी ध्यान रखें, महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है ये।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें बताया कि लक्षण के बारे में मॉस्किटो से हमें बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी को बीमारी होती है तो क्या कोई रेड फ्लैग साइंस हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया ये कुछ सालों बाद होती है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो रेड फ्लैग साइंस कौन से हैं?
0: देखिए, रेड फ्लैग साइंस का मतलब ये कि अचानक से लगे कि हाँ अब तो मुझे इलाज के लिए कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अचानक से यदि बहुत तेज बुखार आ जाए या बहुत तेज ठंड लगे, जो कि वैसे आप एक प्रश्न आया था कि मलेरिया में भी तो लक्षण होता है, मगर यदि प्रभावित अंग हाथ या पैर के अंदर लाली सी आने लगे या वो इलाका थोड़ा गर्म महसूस होने लगे जहां पर आपके लाली पैर हाथ में या पैरों में, खासतौर से आपका जो जांग हो गई वहां पर या बगल हो गया वहां पर, या कोई आपको दगे के आपके हाथों में कहीं लाल लाल रंग की बन रहा है कुछ, लाल हो गया वो, या हाथ पर सूज गया है और वहां पे असहनीय दर्द हो रहा है या कड़ापन आ रहा है, यदि आपके पैरों के अंदर जो खासतौर से दोनों पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बीच में आपको लगे कहीं मवाद आने लगी है, थोड़ा सूज गए हैं पैर और वहां से मवाद वगैरह आने लगी है, या कुछ पुरुषों के अंदर यदि अंडकोश में या कहीं स्क्रोटम में आपको लगे भारीपन हो गया है और कहीं इसमें पानी भरने जैसा महसूस हो गया और गंभीर सूजन या दर्द महसूस होता है, या यदि ऐसा लगे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उस समय, और लगातार सूखी खांसी लगातार आपको आ रही है, तो उसमें खून की जांच कराएं। खून की जांच में कई दफ़े इयूसिनोफिल काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आती है, जिसको हम टीपी ट्रॉपिकल पल्मोनरी इयूसिनोफिल बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको लगे कि हाँ ये सब चीज़ें थोड़ा हो रही हैं, तो मुझे पूरा कहीं ना कहीं अब मुझे इलाज तो पहले ही शुरू कर देना चाहिए, मगर ये रेड फ्लैग साइंस हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि खून की जांच कराए, तो इसके लिए एक खून की जांच होती है या और कोई टेस्ट भी होते हैं?
0: देखिए, खून की जांच मैंने बताया ना, वो खून की जांच इसलिए कि मैंने अगर जैसे उसमें देखने के लिए इयूसिनोफिल काउंट बढ़ी हुई कि नहीं, जैसे इसमें मैंने बताया ना कि ऑकल्ट फाइलेरियासिस, उसमें आपके फेफड़े से संबंधित बीमारियां ज्यादा, संबंधित आपके लक्षण ज्यादा होंगे, मगर यदि वैसे देखना है कि आपको खून में माइक्रो फाइलेरिया है कि नहीं, तो उसके लिए नाइट ब्लड सैंपल्स लेते हैं, या आजकल रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आने लगे, किट भी आने लगी हैं, वो सब सरकारी उसमें उपलब्ध हैं, वहां पे जाके जांच करा सकते हैं और सब मुफ्त हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया पर, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन सुनते हैं एक गीत।

0: जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, ऐसे गीत जब भी सुनते हैं तो ज़िंदगी जीने का मन करता है, ज़िंदगी में आनंद लेने का मन करता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर में, फाइलेरिया की एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड डॉक्टर जी, ये है मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, मेरा सवाल है कि जिस तरह बीमारी हो जाती है तो क्या उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, और क्या ये अनुवांशिक भी होता है? अगर परिवार में किसी को हुआ है तो फैमिली के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उन्हें भी टेस्ट करवाना चाहिए?
1: नाम क्या बताया इनका?
0: इनका नाम है मोहम्मद इम्तियाज़ साहब।
1: देखिए, नंबर एक चीज तो ये कि ऐसा कोई चीज नहीं कि प्योरीफाई, ब्लड प्योरीफाई करना ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज ये कहीं अनुवंशिक भी नहीं है, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलेगी बीमारी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस चीज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि यदि, मगर दूसरे परिवार के लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक चीज ये है कि यदि घर में किसी को हो गई बीमारी तो जैसे मैंने बताया कि वो व्यक्ति 7-8 साल तक नॉर्मल रहेगा, दिखेगा बिल्कुल नॉर्मल, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर माइक्रोफेलर लार्वा डेवलप करता रहेगा, तो दूसरों को कहीं ना कहीं बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है। मगर इसमें कहीं ना कहीं, इसीलिए जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, सबको एक साथ दवाई खिलाना नियत समय पे, 5-6 साल तक यदि लगातार वो दवाई यदि सबको खिलाई जाए, मतलब एक जैसे फरवरी में और अगस्त के महीने में, इस साल अगस्त में नहीं किया गया, कुछ इलाकों में किया गया, कुछ राज्यों में किया गया वो, क्योंकि फरवरी में ऑलरेडी ये मास लेवल पे कर दिया गया था ये काम। तो अगले साल शायद फरवरी में दोबारा से ये होगा कि सभी को, जिन जिन इलाकों में ये समस्या है वहां पर ये सबको दवाई दी जाएगी। तो वहां इसका महत्व है कि जिन लोगों को घर के बाकी सदस्य हैं, इसलिए जो दिखने में नॉर्मल लग रहे हैं, कोई उनको तकलीफ नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कीटाणु और वो माइक्रोफाइलेरिया उसके शरीर में, खून में है, तो उनको वो खत्म करने के लिए आवश्यक है कि वो भी वो दवा लें।
0: आज डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर मच्छर ने किसी को काटा है तो ये बीमारी का

0: सर 5-6 साल बाद दिखता है, तो ये जो 5-6 साल का पीरियड है उस पीरियड के दौरान भी कोई सिम्टम्स या कुछ असर दिखता है?
1: यही तो इसकी बहुत ही एक अजीब चीज है
0: या कि सीधा 5-6 साल बाद ही दिखेगा?
1: नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो यदि हाँ खून की जांच यदि करेंगे रात के समय, नाइट ब्लड टेस्ट यदि करेंगे, नॉक्टर्नल ब्लड टेस्ट अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं नॉक्टर्नल ब्लड स्मियर या कोई एंटीजन टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह करेंगे तो उसमें मालूम पड़ सकता है कि उस व्यक्ति में वो माइक्रो फैलेरिया है कि नहीं है। आजकल तो कई सारे और भी चीज आ गई, नई नई तकनीक आ गई जिसमें मालूम पड़ सकता है, मगर जो व्यक्ति सेहतमंद लग रहा है मगर कहीं ना कहीं उसके खून में जी जांच करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर माइक्रो फैलेरिया लार्वा मिले, तो माइक्रो फैलेरिया के उस मिल सकते हैं। तो ये उसके लक्षण मगर क्योंकि ये जो इसका लार्वा है बहुत धीरे धीरे कहीं ना कहीं लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे लसिका तंत्र है उसको धीरे धीरे डैमेज करता है और वो उसको धीरे धीरे उसको नलिकाओं को ब्लॉक कर देता है और तो कहीं ना कहीं लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस वजह से सूजन वूजन शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसमें समय लगता है इसके बीमारी को दिखने में।
0: तो ये जो आपने सूजन की कहा, तो ये सूजन को कैसे कम कर सकते हैं?
1: देखिए अब यदि एलिफेंटियसिस हो गया, यदि हाथी पांव हो गया तो उसमें क्या करना है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें एक और चीज है, इसमें सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम किया है कि जहां जहां ये पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस है इस बीमारी का, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहाँ बीमारी ज्यादा है, तो वहां पे फाइलेरिया क्लिनिक्स वगैरह बनाई हुई उन्होंने सेंटर्स पर, तो उन सेंटर्स पे या आशा बहनों के माध्यम से एक हम बोलते हैं MMDP मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उस पैर सूजन की वजह से कहीं डिसेबिलिटी हो जाती, उसको कैसे और ताकि ना बढ़े तो उसके लिए कुछ उनको एक किट दी जाती है जिसमें उस किट के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, टॉवल होता है, एक बहुत बड़ा टब होता है और साबुन होता है, लगाने के लिए ट्यूब होती है, तो और प्लस उनको आशा बहन या जो सेंटर पर हेल्थ सेंटर पर या जो आपका आयुष्मान क्लिनिक वगैरह है वहाँ पर, आरोग्य मंदिर वगैरह जो है वहाँ पर उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कैसे उनको सेव अपना करना है, तो उसमें पूरा रेगुलरली उसको वॉश करना, उसको पैर को धोना जहां जहां सूजन है, और कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि कहीं भी ऐसी जगह जहां पे कोई घाव वगैरह बन गया उसका इलाज करना, पैर को सूखा रखना, पैर को ऊपर रखना, और कहीं ना कहीं कुछ एक्सरसाइज उनको बताई जाती हैं, बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही कठिन एक्सरसाइज होती हैं, तो कहीं ना कहीं उस सूजन कम करने के लिए तो ये जरूरी है कि वो सब जिनको बताया। और यदि किसी को एक्यूट अटैक हो जाए, लगे कि अचानक से उनको बहुत ज्यादा सूजन आ गई है, बिल्कुल लाल हो गया पैर, तो उस समय क्या करना है वो भी बहुत जरूरी है। यदि किसी को अचानक से कोई एक्यूट अटैक हो जाता है सूजन का, बिल्कुल लाली आ जाए पैरों में या ऐसा कुछ हो जाए, तो उसमें गर्म पानी की सिकाई नहीं करनी है बल्कि ठंडे पानी के कपड़े को ठंडे पानी में डाल के उसको पैरों पे जहां जहां आपको सूजन है, बहुत ज्यादा लाली आ गई है, उस पर पूरा उसको रखकर उसको फिर कपड़ा बदलो, फिर उसको रखो और पैर को ऊपर करके रखना है, मतलब टांगों को ऊपर रखना है ताकि वो सूजन थोड़ा कम हो, और उसका पैर को बिल्कुल ड्राई रखना है, उसमें यदि गीलापन रहेगा तो उसमें चांसेस हैं कि उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा, प्लस उसको तौलिए से पोंछ कर रखें, ये सब चीज़ें उसकी केयर करना, और ख़ासतौर से उनको जो बताया था कि चप्पल उनकी खास किस्म की हो ताकि वो कहीं पैरों में कोई घाव वगैरह ना पैदा हो जाए, तो ये सब चीज़ें उनको दिखाई जाती है, सब उनको समझाया जाता है कि कैसे कैसे उनको केयर करके रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको ये सब चीज़ें उनको करना है। जी
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि डायग्नोस हो गया कि किसी को फाइलेरिया है, तो इसके ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है?
1: देखिए अगर मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन की यदि बात करें तो वो तो उसी समय घर घर महिलाएं घर घर आती हैं, आशा बहनें उसी टाइम में देती हैं, आपको अस्पताल जाएंगे तो ज्यादा दिन का नहीं, 2-3 हफ्ते का कोर्स वो डॉक्टर है जो डिपेंड करता है किस इलाके में आप हैं, तो वहां पर उनको उतने दिन की दवाई दी जाती है और ये उनको दी जा सकती है, वहीं वो उसका इलाज है वहां पर। जी
0: तो क्या ये बीमारी पूरी तरह से क्योरेबल है, पूरी तरह ठीक हो जाता है या
1: प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल सही हो सकता है, मगर यदि एक बार यदि सूजन आनी शुरू हो गई और एलिफेंटियसिस हो गया कहीं ना कहीं ये सब चीजें होंगी तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है बाद में खासतौर से, मगर हाँ यदि एक और चीज मैं थोड़ा बताना बोलूंगा, यदि जैसे कुछ एक चीजें जैसे हाइड्रोसिल है उसका सर्जिकल ऑपरेशन किया जा सकता है, कई दफे सूजन पैरों में बहुत ज्यादा हो और अगर एलिफेंटियसिस इतना ज्यादा तो कहीं सर्जिकली उसको थोड़ा करेक्ट करके सही किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए भी सरकार ने सुविधाएं दी हैं कि वो सब मुफ्त में इसका इलाज संभव है।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड, ये लिखते हैं वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, आपको प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी, ये लिखते हैं

0: यह बुखार होने पर हम यूजुअली गोली ले लेते हैं, 3 या 6। क्या ये पेन किलर ज़्यादा लेने से साइड इफ़ेक्ट होता है? रेडियो डॉक्टर में बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, बहुत ही वैल्यूएबल प्रोग्राम चल रहा है। वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
1: नाम क्या बताया इनका?
0: इनका नाम है आशा पाठक।
1: आशा जी, एक तो पहली चीज़ आप नीदरलैंड से फ़ोन कर रहे हैं, नीदरलैंड से मैसेज दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो वहाँ तक हम, वहाँ पर तो खैर बीमारी की समस्या नहीं, मगर आपका प्रश्न शायद इस बीमारी से संबंधित नहीं। आपका प्रश्न है कि क्या हम जो
0: जनरली
1: दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ जो दर्द निवारक दवाइयाँ देते हैं, क्या उनका?
0: ये लिख रहे हैं कि यूजुअली बुखार होने पर हम गोली
1: हाँ
0: ले लेते हैं,
1: हाँ
0: तो क्या उनका साइड इफेक्ट होता है? क्योंकि
1: देखिए
0: 3 बार ले लिया, 6 बार ले ली, वो लिख रही
1: देखिए
0: हैं।
1: देखिए कोई भी एक चीज ध्यान रखिए, जो भी हम शरीर में बाहर से कुछ भी चीज लेते हैं जो कि कृत्रिम से बनी हुई गोलियां हैं, कुछ भी, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता है। मगर हाँ, अगर लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए, जो कि प्रेस्क्राइब डोज है, यदि वो लिया जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं। यदि आप प्रेस्क्राइब डोज से ज्यादा लेंगे, बिना डॉक्टर सलाह के लेंगे, तो नुकसानदायक तो हो सकती कुछ भी चीज। जी
0: डॉक्टर साहब, हम इससे बचाव के लिए, हम सभी के लिए, कि इससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, जो बताया मैंने पहले ही कि यदि मच्छर इसकी रोग की जड़ है, ठीक है, मच्छर को आपको किसी तरह से ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मच्छरों खत्म कीजिए, घर के आसपास थोड़ा सफाई रखिए, और यदि आपके इलाके में दवाइयां दी जा रही हैं तो मास्टर एडमिशन है, तो उसमें सभी लोग चाहे स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, सबको दवाई दिलाइए, प्लस सेहतमंद रहिए, सबका ध्यान रखिए।
0: और श्रोताओं के लिए मैसेज,
1: श्रोताओं के लिए मैसेज ये कि अपने आप को, अपने आसपास, घर के आसपास पूरा सफाई रखें, यदि किसी को लगे कि आपके आसपास किसी को बीमारी हो गई तो उसे पूरा इलाज कराएं, और सरकार के सभी कार्यक्रमों में सहयोग दें।
0: तो दोस्तों, फाइलेरिया से बचाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। मच्छरों से बचाव, स्वच्छता और समय पर दवा, ये छोटे कदम हमें इस बीमारी से सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आइए खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि स्वस्थ समाज की पहचान है बीमारी से पहले उसकी रोकथाम। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर SK रसानिया, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
1: शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।
0: दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, सही जानकारी, सही आदतें, यही है स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

चार बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने अपनी ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता के दौरान जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग की घटना में 5 लोग मारे गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर सरकार और आंदोलनरत विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत होगी। बिहार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट।

और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के एम आर अर्जुन, हरिहरन, अमसा करुणन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। ये थे अब तक के आकाशवाणी मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, शुरू हो गया है आपका फेवरेट प्रोग्राम अल्फा जैन, और आज अल्फा जैन में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी शालिनी। दोस्तों, अल्फा जैन में खास सोमवार के दिन हम लेकर आते हैं मौका युवाओं के लिए। जी हाँ, युवाओं को मिलता है मौका यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने का, क्योंकि आज होता है प्रोग्राम यूथ स्पीक्स, और आज ये मौका मिला है ईशान को। तो ईशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में। ईशान, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं।
2: जहन मैम, मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म जामिया हमदर्द से परस्यू कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर में हूँ, एंड साथ ही साथ मैं NCC का भी हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ। मेरा एक दायित्व है अपने देश की, अपने समाज की सेवा करना, और मुझे ऐसा लगता है कि NCC एक राइट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए।
1: बिल्कुल, तो NCC के बारे में और अभी तक के ईशान के जो भी अनुभव रहे हैं उनके बारे में जानेंगे आज के अपने इस खास शो में।

0: तो दोस्तों हम बात कर रहे थे एनसीसी की ईशान से। तो ईशान आप बता रहे थे कि आप एनसीसी का हिस्सा रहे हैं, तो आपने कब एनसीसी ज्वाइन किया और कैसे आपके मन में आया कि आपको एनसीसी का रुख करना चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए?
1: जी देखा जाए तो एनसीसी मैं 2024 से इसका हिस्सा हूँ, और साथ ही साथ मैं जब कॉलेज में आया था जामिया हमदर्द में, तो जो मैंने नोटिस किया कि कॉलेज लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, इधर से उधर लोग भटक रहे हैं, किसी को दिशा की ज़रूरत है, किसी को नए ज्ञान की ज़रूरत है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अनुभव के ऊपर होनी चाहिए। जितना अनुभव लोगे ज़िंदगी से, जितना सीखोगे आगे जाके काम आएगा।
0: बिल्कुल।
1: स्टार्टिंग में मुझे एनसीसी के बारे में इतना पता नहीं था, तो मैंने अपने परिवार में डिस्कस किया, तो मेरी मम्मी ने भी एनसीसी करी है।
0: ओके।
1: और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बोला कि ईशान एनसीसी करो, क्योंकि उसका बहुत फ़ायदा है।
0: कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मम्मी से मिली, एक पुश मिला मम्मी की तरफ से कि आपको एक रास्ता मिले, एनसीसी से जुड़ने का एक मौका मिले। क्यों ऐसा लगा आपकी मम्मी को कि आपको एनसीसी का हिस्सा बनना चाहिए?
1: देखिए वैसे तो मेरी मम्मी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, और उन्हें पता है कि इसका मन बहुत चंचल है, और एनसीसी में जो अनुशासन, जो सब्र करने की क्षमता होती है, वो अगर मैं सीख गया तो मेरी जिंदगी के लिए आगे जाके काम आ जाएगा।
0: और डिसिप्लिन होता है।
1: एग्जैक्टली, द डिसिप्लिन दैट्स नीड फॉर वंस अ कैडेट एंड ऑलवेज अ कैडेट।
0: ओके, तो यानी एनसीसी का आप हिस्सा तो बन गए, 2 साल हो गए हैं आपको करीब करीब एनसीसी का हिस्सा बनते हुए। एनसीसी के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे आपसे ईशान, और साथ ही साथ ऐसी क्या सीख थी जो आपको एनसीसी का हिस्सा बनने के बाद मिली, जो आपके अंदर नहीं था, उसके बारे में भी करेंगे बात, लेकिन इस गाने के बाद।

0: वंदे मातरम, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इसी के साथ एक बार फिर आ गए हैं मैं शालिनी और मेरे साथ हैं ईशान, जो एनसीसी का हिस्सा हैं और साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ईशान, हम बात कर रहे थे कि आपने एनसीसी ज्वाइन किया 2024 में, तो वो ईशान जो 2024 के पहले था और वो ईशान जो अब 2026 में, जिसे 2 साल पूरे हो चुके हैं एनसीसी का हिस्सा रहते हुए, क्या परिवर्तन अपने अंदर आप महसूस करते हैं?
1: मैम, बहुत सारे परिवर्तन हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो मेरे अंदर आए हैं। एक होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले लगता था कि मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे समाज को भी बहुत कुछ देना है वापस, समाज के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। जैसे एक नारा है विकसित भारत का, तो एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर क्षमता हो। एकता में बहुत कुछ होता है मैम, अनुशासन से बहुत कुछ होता है। और देखा जाए 2024 वाला जो ईशान था वो ज़्यादा पढ़ाई, किताबी कीड़ा बनना, या एक तरीके से अपने कंफर्ट जोन में रहना। लेकिन ये वाला जो ईशान है, ये अब ये देखता है कि मुझे आने वाले कल के लिए अभी से अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, समय का पालन करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। एक होता है कि हम ज़िंदगी के साथ बस चल रहे हैं, लेकिन एक होता है कि हम क्या खुश हैं या नहीं। तो अगर मैं खुश हूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और वो मैंने देखा है अपने अंदर।
0: बिल्कुल, मतलब एनसीसी ने आपको क्या सिखाया, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आया, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीसी में डिसिप्लिन होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आम कैंडिडेट्स या फिर आम स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन एनसीसी का हिस्सा बनने के बाद वो आपको फॉलो करनी होती है, उन बातों के बारे में भी बताएं।
1: मैम, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एक तो एज अ मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, हमारे लिए हेयर कट पे बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। साथ ही साथ मैम, हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द सेंस हमें बेसिकली बताया जाता है ड्रेसिंग सेंस, चाहे आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, एनसीसी की टी शर्ट पहन रहे हो, शूज कैसे पहन रहे हो, तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म, एक डिसिप्लिन में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। एंड सबसे तीसरा जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मैम, मेंटल हाइजीन, मेंटल टफनेस, मेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप सोच से ही पराजित नहीं हो पाते हो, तो आप अपने चैलेंजेस को, अपनी समस्या को भी बहुत आराम से जीत सकते हो, जो मैंने देखा है। वो कहते हैं ना मैम, वंस यू लीव योर कंफर्ट जोन एवरीथिंग इज कॉन्कर्ड।
0: वेरी गुड, बहुत ही अच्छे नोट पे हम इस गाने के साथ हमारे श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। और इसी के साथ एनसीसी के बारे में हमारा ये जो कन्वर्सेशन है ये जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ

0: बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन और आज अल्फा जैन में हमारे साथ हैं आप ही के बीच से ईशान। तो ईशान, हम बात कर रहे थे एनसीसी की, आपने बताया कि एनसीसी ने कैसे आपकी जिंदगी को बदला, कैसे आपको बदला, लेकिन एनसीसी में क्या क्या विंग्स होते हैं और कैसे जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको सिखाते हैं, लीडरशिप के स्किल और बहुत सारी चीजें जो बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं एनसीसी के कैडेट्स को, उन पर करने वाले हम बात, बताइए।
5: देखिए मैम, एनसीसी में 3 विंग्स होती हैं, आर्मी, नेवी एंड एयर। मैं आर्मी का हिस्सा हूँ, तो हर एक एनसीसी विंग के अलग रीति रिवाज होते हैं। तो अगर हम बात करें एनसीसी की स्टार्टिंग से, मतलब जब देश आजाद हुआ, तो 1948 की बात है ये। उस वक्त सिर्फ 20,000 कैडेट्स थे पूरे देश में, पूरे देश में सिर्फ 20,000 थे। आज तकरीबन 20 लाख है। तो इवॉल्व हुआ है क्योंकि मैम देखा जाए, भारत देश ने युद्ध लड़े हैं, पड़ोसी मुल्क से बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, और एनसीसी एक ऐसा विंग है जिसे हम बोल सकते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। कभी इमरजेंसी पड़े तो एनसीसी का यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये कैडेट्स को डिफेंस टैक्टिक्स सिखाता है। एंड अगर आपको फ्यूचर में डिफेंस में ही जाना है, आपको देश की रक्षा करनी है, सेवा करनी है डिफेंस के थ्रू, तो ये एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है। और बहुत सारे इसके की बेनिफिट्स भी हैं मैम।
4: ओके।
5: जैसे मैम, एकदम क्राइसिस में कैसे हमें एक्ट करना होता है, नॉट बाय इमोशंस बट बाय लॉजिक, बाय रैशनल थिंकिंग।
4: आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि कहीं आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हो और कभी अचानक से ऐसी स्थिति हो गई हो जब आपको संभालना हो, चाहे आप अपनी ड्यूटी पर हों या ना हो, तो आपने कैसे मैनेज किया, कैसे हैंडल किया सिचुएशन को?
5: मैम अगर मैं बात करूं अपने बारे में, तो RDP रिपब्लिक डे परेड, उसमें मेरी ड्यूटी थी टू हैंडल द क्राउड।
4: ओके।
5: मैं, मेरे साथी कैरेट शहजादा एंड शमी मेरे बड़ी हैं।
4: ओके।
5: हम तीनों ने कैसे संभाला था, क्योंकि उस वक्त बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, दिल्ली में ही है, बारिश हो रही थी, एंड इट वॉज लाइक हमारे पास रेनकोट नहीं थे, पर हम अपनी यूनिफॉर्म में थे।
4: ओके।
5: तो हमने पहले तो अपने बैरे उतारे, एक जगह रखा, और हमने एक जने को रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा है कि तू हमारे बैरे देख लियो, हमारे कपड़े, हमारे बस्ते बैग देख लियो, हम क्राउड को डायरेक्शन देंगे। हमारा काम बेसिकली क्राउड को डायरेक्शन देना था, और अगर कोई डिसेबल है तो उसे असिस्ट करना था।
4: Okay.
5: तो पर्सनली मैम मैंने तो असिस्ट किया, डायरेक्शंस दी, स्पेशली गाड़ियां भी आ रही थी, मैं इनफैक्ट आगे भी गया रोड पे, मैंने वहां पे लोगों को डायरेक्शंस दी, एंड साथ ही साथ बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन को भी हैंड ओवर करना होता है। जैसे किसी को रास्ता नहीं पता है कि कहाँ से जाना है, तो उन्हें बेसिक गाइडेंस देना। अब देखिए मैम, जनता में बहुत तरीके के लोग होते हैं, लेकिन तो है। आपको अपना सबर नहीं खोना है। तो कुल मिला के मैम, एक कैडेट की शुरुआत उसके मेंटल टफनेस से होती है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी मेंटल टफनेस ही तुम्हें कैडेट बनाती है।
4: ओके। मतलब सिचुएशन चाहे आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट हो, आपको स्ट्रेंथ के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना है।
5: जी मैम, बिल्कुल।
4: तो चलिए फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत, और उसके बाद मुझे लगता है कि आपको एनसीसी के बारे में जान के और कहीं ना कहीं कैसे युवाओं को मानसिक तौर पर सशक्त बनाता है एनसीसी, इसके बारे में जान के अच्छा लग रहा होगा। तो हमारी ये बातें रहेंगी जारी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोग्राम यूथ स्पीक्स में। तो हम बात कर रहे थे एनसीसी की। ईशान, एनसीसी का आप हिस्सा रहे हैं पिछले 2 सालों से, कहीं ना कहीं जब आपने एनसीसी में कदम रखा, आपकी जब वहां पर शुरुआत हुई, तो क्या फिजिकल ट्रेनिंग आपसे करवाई गई?
1: देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग

0: में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका एंड्योरेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, वो चेक की जाती है। तो हमें बोला गया था, हमारे कॉलेज में एक क्रिकेट ग्राउंड है तो उसके 2 राउंड लेने थे, ये देखना था कि कौन रुकता है या किसका रिदम टूटता है। हमने कंटिन्यूस जॉग किया, 2 राउंड ले लिए, हो गया। फिर हमसे पुशअप्स लगवाए गए, पुशअप्स 15। फिर हमें जंपिंग जैक्स के लिए बोला गया था। मैं आपको स्पेसिफिकली हर एक एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ ताकि
1: बिल्कुल
0: आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये
1: बिल्कुल।
0: व्हाट गुड।
1: इनफैक्ट हमें जो श्रोता सुन रहे हैं, जो लिसनर्स हैं, और अगर वो चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा बने, उनको अच्छा लगे ये सुनने के बाद, हमारी बातें सुनने के बाद, तो कहीं ना कहीं उनको आइडिया हो जाए, और अगर जो नहीं भी बन पाए, समय निकल गया, लेकिन वो भी ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि समय भले ही निकल गया, लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि जंपिंग जैक्स होते हैं, स्किपिंग, ये सब कराने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ हमारे अंदर अभी भी जान बची है, वो फिर से हमें जॉगिंग के लिए बोला। इस बार 100 मीटर था, पूरा राउंड नहीं, 100 मीटर, भाग के जाओ, छू के आओ और वापस आ जाओ। तो 100 मीटर कंप्लीट किया, वापस आए। फिर तब तो जाके हमसे बोला गया कि तुम्हारा फिजिकल टेस्ट हो चुका है, अब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, 1-on-1 इंटरव्यू।
1: तो ये कितनी देर का सेशन रहा होगा, जब आपने फिजिकल ट्रेनिंग की, 1 घंटा 2 घंटा कितना रहा होगा?
0: मैम मुश्किल से ये चला था 40 से 45 मिनट।
1: अच्छा, 45 मिनट लगातार।
0: हाँ मैम, कंटिन्यूस चलता रहा ये। बीच में हमें 1-2 मिनट का गैप लेने दिया, ब्रेक लेने दिया। कुछ बच्चों को फिजिकल प्रॉब्लम जैसे वॉमिटिंग भी होने लग गई थी,
1: हाँ,
0: तो
1: क्योंकि आपको जनरली आदत नहीं होती
0: हाँ,
1: तो उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते
0: और
1: हैं।
0: थैंकफुली मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। मैं और मेरे कुछ साथी, हर एक नहीं, कुछ साथी, हमने अच्छे से फिजिकल टेस्ट निकाला। जिनको वॉमिटिंग या पेट दर्द, सर दर्द हो रहा था, उन्हें बिठा दिया गया, उन्हें बोला गया रेस्ट करो, फिर किसी और दिन आना। तो मुझे उनका नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जिन्होंने उस दिन अच्छा किया था, तो हम सबको यही बोला गया कि आपका इंटरव्यू होगा। एंड फिर मैंने बोला ठीक है, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड उसके अगले दिन,
1: अगले दिन इंटरव्यू हुआ।
0: हाँ अगले दिन हमें बुलाया गया, स्लॉट वाइज बुलाया गया था। मेरा स्लॉट था 4 से 4:30। मेरा इंटरव्यू वैसे 20 मिनट का ही चला, क्योंकि आधा घंटा इज मैक्स। कोशिश करते हैं इंटरव्यू भी जल्द से जल्द, क्योंकि हर एक बच्चे को इंटरव्यू करना
1: सही बात है,
0: है ना।
1: बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सबसे
0: तो
1: बात करनी है,
0: बिल्कुल
1: सबसे
0: बिल्कुल।
1: पूछना है,
0: तो
1: तो आपका 20 मिनट चला, क्या कुछ पूछा गया, याद
0: इन
1: है?
0: इंटरव्यू का बेसिक मोटिव होता है कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना, बच्चे के अंदर कितनी लॉजिकल रीजन है, कितना वो लॉजिकल सोच सकता है। तो पहले तो हमें बोला गया था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि एक बहुत जनरल क्वेश्चन था और मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था। फिर दूसरा हमें एक कंडीशन दी गई कि आप इस कंडीशन में हो तो आप क्या करोगे। अब एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे जहां तक याद है हमें बोला गया था कि अगर आपके 2 जूनियर्स लड़ रहे हैं ऐसा सीनियर, आप उनकी लड़ाई कैसे रुकवाएंगे। तो मेरा अप्रोच यही था, डिप्लोमेटिक अप्रोच रहेगा, दोनों की बातें सुनी जाए और दोनों की बातों पे तर्क किया जाए और फिर एक दूसरे और एक कॉमन सोल्यूशन पे निकले, ताकि जिससे दोनों का भला हो और ना नुकसान हो, और अगर जिसकी गलती है उसे समझाया जाए कि वो आने वाले टाइम में ऐसा ना करे।
1: ठीक
0: ये
1: है।
0: हुआ। और फिर मेरे से आखिर में ये पूछा गया था कि एनसीसी कमिटमेंट मांगता है, लॉयल्टी मांगता है, अगर हम तुम्हें बुलाएं तुम ग्राउंड पे आना पड़ेगा, अटेंडेंस 75% है, मैंडेटरी है, अगर उससे नीचे हुआ हम आपकी सीट को रद्द कर देंगे।
1: अच्छा,
0: तो मैंने श्योरिटी दी, सर मैं डेफिनेटली आऊंगा, मुझे बस प्रायर नोटिस चाहिए, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ दिल्ली में, तो मुझे प्रायर नोटिस चाहिए 1 दिन पहले का, ताकि मैं समय का अच्छे से बैलेंस कर सकूँ, उल्लंघन नहीं बैलेंस कर सकूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर सकूँ। तो सर ने बोला ठीक है, हो जाएगा। और फिर अगले दिन हमारी लिस्ट रिलीज की जाती है, कौन कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, तो हम आ जाते हैं।
1: तो उसमें आपका सिलेक्शन हो
0: जी
1: गया।
0: मैम
1: चलिए, मतलब आपकी शुरुआत हो गई एनसीसी में, इस तरीके से एक टफ ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग बोले या एग्जाम बोले,
0: इस पर।
1: हाँ, क्योंकि उसके बाद तो मुझे लगता है नियमित तौर पर ट्रेनिंग होने लगी होगी, उसके बाद कैसा रहा?
0: उसके बाद मैम हमें हफ्ते में 3 या 2 बार क्लासेस तो होती थी, सैटरडे को क्लास भी होती थी, लेकिन वो स्पोर्ट्स क्लास होती थी, वो अलग क्लास थी। अगर मैं बात करूं एनसीसी की क्लास, उसमें जैसे डीएसटी, ड्रिल्स, सावधान, विश्राम, डीएसटी करना, ये सब करना, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को सिखाया जाता है, क्योंकि हमें बी सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ सेकेंड ईयर से तो सीएटीसी कैंप आ रहा था, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, वो करना जरूरी है फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। तो एज अ फर्स्ट ईयर कैडेट 2024 में मैंने बेसिक चीजें सीखी,
1: बेसिक
0: सावधान।
1: चीजें यानी थ्योरी हुई या फिर
0: हाँ
1: सब
0: मैम
1: कुछ ग्राउंड पे ही था?
0: जी मैम, मैं बता रहा हूँ, थ्योरी भी हुई, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले अभी फिजिकल उसका सुन लीजिए। डीएसटी, ड्रिल, सावधान, विश्राम, मार्च पास, स्टाइल मार्च हो गई, फिर तब जाके गन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी की जाती है, सलामी शस्त्र, बग्गल शस्त्र, ऐसे कर करके हमने सीखा, और तब जाके ये हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई। फिर इससे इसके बाद आता है हमारा थ्योरी क्लासेस, जिसमें हमें

0: होती थी मेरी लेक्चरेट, उस
1: ओके
0: पर ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता था ऑन एनीथिंग,
1: एनीथिंग
0: करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल हो सकता है, सोशल इशू हो सकता है, एनीथिंग, और आपको एक मिनट दिया जाएगा प्रिपरेशन का और आपको बोलना है उसके ऊपर, तीन मिनट बोलना है,
1: तीन मिनट बोलना है
0: दैट टू इन वन लैंग्वेज, इधर इट कैन बी हिंदी और इधर इट कैन बी इंग्लिश.
1: ओके, ऐसा नहीं आप इंग्लिश में बोले, जैसे आजकल चलता है सब जगह
0: बायलिंगुअल,
1: हिंदी और इंग्लिश दोनों,
0: बायलिंगुअल नहीं चलेगा, बायलिंगुअल नहीं चलेगा, बिकॉज अगेन क्राइसिस कम्स इमीडिएटली, तो ये उसके लिए होता है.
1: ओके, कि अचानक से आपको कोई सिचुएशन मिल गई तो आपका माइंड कैसे रिएक्ट करे.
0: एग्जैक्टली, तो वो चीजें जल्दी से जल्दी बनाना, बिल्डअप करना, फैक्ट्स बिल्डअप करना, जल्दी क्विक डिसीजन लो, तो वो होता है. और ये SSB ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी होता है. फिर हमें आ रही एक प्रैक्टिस होती थी पिक्चर परसेप्शन, तो हम एक पिक्चर दिखाते थे और हमें उसे अच्छे से देखना होता 10 सेकंड के लिए, और जो परसेप्शन हमारा बन रहा है वो हमें एक एक करके बताना है, और जिसका परसेप्शन अच्छा होता था वो ही जीतेगा.
1: ओके, तो मतलब उसके हिसाब से मार्किंग होती थी.
0: हाँ, इधर यू कैन टेल द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, या बता सकते हैं कि आपका क्या मानना है.
1: ये तो हुई आपके NCC फर्स्ट ईयर की बात.
0: जी मैम.
1: ठीक है, इसके बाद आपने क्या कुछ सीखा अपनी ट्रेनिंग में, क्या कुछ खास रहा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: मंगल भवन मंगलहारी।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन और बात हो रही है NCC की ईशान से। तो ईशान, हमने जाना कि NCC में कैसे क्या कुछ सिखाया जाता है, क्या फिजिकल ट्रेनिंग होती है, लेकिन आम तौर पर ये माना जाता था कि NCC में ड्रिल, सैल्यूट, कुछ आमतौर पर इसी तरीके की चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन आपसे इतनी सारी बातें करके हमको पता लगा कि देर आर मैनी मोर थिंग्स टू लर्न इन NCC। लेकिन कहीं ना कहीं आमतौर पर ये राय तो है कि अगर आपको डिफेंस में करियर बना है तो आप NCC को अपना एक पड़ाव बनाइए। आपको लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है?
3: देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए, जो आपने प्रश्न पूछा है। एंड जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि NCC इज नॉट जस्ट मेरली अबाउट

0: about saluting or going with the drill or physical toughness. It is more beyond that. NCC के अंदर culture भी आता है, knowledge, wisdom, बहुत कुछ चीज़ें हैं. अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ आपको, last year there was a camp in Vijayawada, Andhra Pradesh, ANU University, Idea Innovation Startup Camp.
1: Okay.
0: वो भी NCC ने निकाला था. जबकि NCC एक defense platform है और startup camp doesn't match this. लेकिन फिर भी NCC ने इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया स्टार्टअप कैंप, और वहां पे NCC के कैडेट्स ने ही पार्टिसिपेट किया. मैंने खुद दिल्ली डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट किया था इसमें एज अ नेशनल स्पीकर, और हमारा स्टार्टअप भी आया था. बहुत अच्छा लगा था स्टार्टअप. तो ये एक सिनेरियो के. दूसरा था इंडो भूटान यूथ फ्रेंडशिप कैंप, मैं उसका भी पार्ट था. वहां पे हमारे से कोई ड्रिल नहीं करवाई गई थी, वहां पे हमारी कल्चरल स्किल्स देखी गई थी, डांसिंग, कम्युनिकेशन, एंकरिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, हाउ डू यू कोऑर्डिनेट विद योर कलीग्स एंड बैचमेट, वो तो देखा ही गया था. एंड बहुत सेलेक्टिवली इसका सिलेक्शन हुआ था. मेरा खुद अच्छे से इंटरव्यू हुआ एंड तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, वरना ऐसे किसी नॉन आरडी होल्डर को इंडो भूटान में भेजना ये बहुत बड़ी बात होती है. एंड अगर मैं आपको बात करूँ आगे भी, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है संकल्प, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया. मैं खुद उसका पार्ट हूँ सोशल मीडिया का.
1: संकल्प एनसीसी का ही कोई प्लेटफॉर्म है?
0: संकल्प इज नॉट एग्जैक्टली एनसीसी, बट इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद एनसीसी इन द सेंस ये एनसीसी से रिलेटेड जागरूकता, शिक्षा और लोगों को वाकिफ करता है.
1: अबाउट व्हाट?
0: बहुत कुछ है. जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे लास्ट ईयर सीनियर थे कैडेट दुष्यंत सर. ही वॉज लीडिंग द ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द नॉलेज व्हाइल ऑपरेशन सिंदूर वॉज गोइंग ऑन. क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहुत प्रोपेगेंडा, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सोशल मीडिया पे आ रही थी जो सही नहीं थी, और आम लोग उनको मान रहे थे और फॉरवर्ड भी कर रहे थे.
0: एग्जैक्टली. तो ऐसे चीज का इनिशिएटिव लेते हुए दुष्यंत सर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, ऑपरेशन सिंदूर से राइट इन्फॉर्मेशन फैलाई, सही इन्फॉर्मेशन फैलाई. और संकल्प एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको AI एंड ऑनलाइन चीजें कैसे यूज की जाती हैं वो बताता है. मैं खुद इसका पार्ट हूँ, कंटेंट क्रिएशन में हूँ मैं. तो जैसे लास्ट ईयर की बात है, जब
1: तो संकल्प के लिए आपने क्या क्या कंटेंट क्रिएट किया?
0: एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ. जैसे करंट डेवलपमेंट चलता है, जैसे लास्ट ईयर पे एक ची रनिंग कैंप हुआ था. ची रनिंग कैंप वॉज रिलेटेड टू फिटनेस, जॉगिंग, मैराथन, ये जितने भी चलते रहते हैं. तो ची रनिंग कैंप में हमारा मेन उद्देश्य ये था उस कैंप को प्रमोट करना, उस कैंप की रीच बढ़वाना, एंड साथ ही साथ उस कैंप का मोटिव क्या था,
1: इस कैंप का क्या मोटिव,
0: हेल्थ अवेयरनेस बेसिकली.
1: सभी लोग अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हों, वॉक करें, रन करें.
0: एग्जैक्टली. अभी एक रिसेंटली एक और वो आया था साइक्लोथॉन, साइक्लिंग इवेंट था जो दिल्ली में ही कंडक्ट किया गया था. उसमें भी एनसीसी कैडेट्स ने पार्ट लिया.
1: ओके.
0: संकल्प यहाँ पे एक इनिशिएटिव ये लेता है, बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली राइट इन्फॉर्मेशन फैलाता है रिलेटेड डेवलपमेंट. ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अब जैसे मैं किसी से पूछूं ऑपरेशन सिंदूर क्या है, बहुतों को पता होगा. लेकिन अगर मैं किसी से ये पूछूं ऑपरेशन महादेव क्या था,
1: तो वो नहीं पता होगा,
0: शायद वो किसी को ना पता हो.
1: नहीं पता.
0: लेकिन अगर आप किसी संकल्प वाले से पूछे तो वो पता होगा, क्योंकि संकल्प इस पे रिसर्च करता है. संकल्प देखता है कि करंट डेवलपमेंट क्या चल रही है अभी, बी इट द नेशनल इशू, बी द इंटरनेशनल इशू, लेकिन हम हर चीज पे नजर रखते हैं और उसी के हिसाब से.
1: ये बेसिकली सोशल मीडिया पे काम करते हैं.
0: एग्जैक्टली. इसके बहुत सारे
1: डिपार्टमेंट, कितने सारे लोग, कितने सारे यूथ कनेक्टेड हैं
0: इस पे. बहुत सारे यूथ कनेक्टेड हैं. हम नॉट ओनली इन दिल्ली बट वी आर ऑल्सो इन आउट ऑफ दिल्ली. बहुत सारी हमारी रीच है. एंड इनफैक्ट हमारा, हमने इतना अच्छा इंटरव्यू भी किया था मेजर सतबीर सिंह का, जिन्होंने 1965 की बैटल लड़ी थी.
1: ओके.
0: उनका इंटरव्यू हमने किया था, लास्ट ईयर की ही बात है.
1: हमने मतलब कितने लोगों ने कंडक्ट किया?
0: मैं हो गया, बहुत सारे थे, मेरे बैचमेट थे और मेरे सीनियर्स भी थे. दुष्यंत सर हो गए, आदित्य सर हो गए, युवराज सर हो गए.
1: कितनी देर का रहा वो इंटरव्यू?
0: वो इंटरव्यू संकल्प के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है अभी. वो आधे घंटे तक का तो चला था. बहुत लंबी कहानी थी एंड उन्होंने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था. आगे जाके अगर हमें संकल्प की बात करूं, संकल्प के बहुत सारे डिपार्टमेंट है. पब्लिक रिलेशंस है, कंटेंट क्रिएशन है, ग्राफिक्स है, वीडियोग्राफी है. ये हर चीज डिफेंस से ही रिलेटेड डालते हैं, बट साथ ही साथ ये भी देखते हैं करंट डेवलपमेंट क्या चल रही है. रिसेंटली जैसे लास्ट ईयर की बात है, जब वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया था, तो उस पर भी संकल्प ने पोस्ट डाली थी कि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन, तो ऐसे ऐसे करके है. तो मैं तो खुद चाहूंगा कि युवा अगर सोशल मीडिया में भी एक्सेल करना चाहता है, तो वो एनसीसी के थ्रू संकल्प में आ सकता है.
1: बिल्कुल. यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने जो करंट अफेयर्स, आसपास जो चीजें हो रही हैं, उनको जानना भी जरूरी है. साथ ही साथ आप किसी प्रोपेगेंडा का पार्ट ना बने, ये भी बहुत मायने रखता है कि आप अपने आंख नाक कान हमेशा खुले रखें एंड लॉजिक लगाएं. जो लॉजिकल रीजनिंग आपको एनसीसी में सिखाई जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का ही हिस्सा है. और हमें ध्यान रखना है कि किसी तरीके से भी हम किसी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने. तो फिलहाल एक गीत आपके लिए, समय हो

0: ये तिरंगा शान से ऊंचाइयों को छूता रहे, यही हर भारतवासी की इच्छा होती है। और कहीं ना कहीं एनसीसी कैडेट्स हमारे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ कदम उठाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और अगर कोई अचानक से सिचुएशन आ जाए तो उस परिस्थिति में भी एनसीसी कैडेट्स अपनी योग्यता के हिसाब से काम करते हैं। तो ईशान, जाते जाते आपने इतना सब कुछ बताया एनसीसी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। आपको क्या लगता है जो चैलेंजेस आजकल के यूथ के सामने हैं, चाहे वो फिजिकली हों या मानसिक तौर पर भी हों, उनको देखते हुए और अपनी ट्रेनिंग को देखते हुए आप क्या कुछ मैसेज, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे हमारे देश के युवाओं के लिए?
1: मैं यही बोलूँगा, मेक मिस्टेक्स।

0: गलतियां करो, जानबूझ के नहीं, लेकिन जो भी गलती कर रहे हो उस गलती से सीखो, उस गलती को परखो। इट इज़ ओके टू सेलिब्रेट सक्सेस, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, आई विल से दिस। एंड पता है, कंट्रीज लाइक भूटान, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डिसुप्स करके, वहाँ पे कंपल्सरी है दैट यू हैव टू कम इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व योर नेशन, बी इट एनी फील्ड, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, आर्ट, डिफेंस, एनी फील्ड, बट सर्व योर नेशन। सेवा परमो धर्मा, दैट इज द मोटो फॉर इंडियन आर्मी।
1: और बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब हमारे देश में रहते हैं तो वो भारतीयता, वो देशभक्ति का जुनून हम सबके अंदर होना चाहिए।
0: Exactly.
1: तो ऑटोमेटिकली
0: Exactly.
1: हम जो भी करेंगे अपने देश की सेवा के लिए करेंगे।
0: बिल्कुल मैम, बिकॉज नॉट ऑल हीरो वेयर केप्स, यू कैन वेयर योर यूनिफॉर्म ऑल्सो एंड यू कैन नॉट इवन वेयर योर यूनिफॉर्म, बट यू आर अल्टीमेटली अ देशभक्त, यू आर अल्टीमेटली अ हीरो फॉर योर कंट्री, एंड सर्विंग योर कंट्री टू द फुलेस्ट इज एक्चुअली द राइटेस्ट ड्यूटी, वही तो धर्म है।
1: बहुत खूब ईशान, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने के लिए, और अपने जरिए अपने सभी जो युवा साथी हैं उन सबको एक बहुत ही बढ़िया मैसेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ, आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और विप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति के सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और

0: एयर गैप्ड सिस्टम को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उनके हमलों की साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले में रामगढ़ वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद एक व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। यह अभियान संदिग्ध गतिविधियों के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ठोस खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम GAASI के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए 2 MQ-9BC गार्डियन विमान 30 महीने की लीज पर लिए जाएंगे। ये विमान अत्यधिक ऊंचाई पर लंबी अवधि तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। इनका उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी के लिए किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसार तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारण का अभी पता चल नहीं पाया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कल रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। तूतू खालिनी रोड के पास एक टैंकर और कार की टक्कर में हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और टैंकर चालक से पूछताछ जारी है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका अभी भारत से 178 रन पीछे है। हॉकी विश्वकप में भारतीय पुरुष टीम आज अपने दूसरे पूल डी मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज नई दिल्ली में शुरू हो गई। MR अर्जुन और हरिहरन अमसाकर्णन की भारतीय जोड़ी ने पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. BJP National President Nitin Naveen today announced the new team of national office bearers of the party. Mr. Naveen has appointed 13 national vice presidents including Vasundhara Raje Sindhya, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Baijayant Jayapanta, Sardar Manpreet Singh Badal and Rekha Verma. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal has been appointed as the national treasurer of the party. B.R. Santosh has been appointed as Organizational National General Secretary. Mr. Naveen has also appointed 8 party leaders as National General Secretary, including Vinod Tavre, Sunil Bansal, Smriti Irani and Biplab Kumar Deb. The party also named new heads of its various morchas, including Dr. Hemang Joshi as Yuva Morcha President, Roop Kumari Chaudhary as Mahila Morcha President and Bansi Lal Gurjar as Kisan Morcha President.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार

0: चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage, were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme or ECMS with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applications are related to the manufacturing of products including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. BJP National President Nitin Naveen today announced the new team of national office bearers of the party. Mr. Naveen has appointed 13 national vice presidents including Vasundhara Raje Sindhya, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Bejayant Jay Panda, Sardar Manpreet Singh Badal and Rekha Verma. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal has been appointed as the national treasurer of the party. B.L. Santosh has been appointed as organizational national general secretary. Mr. Naveen has also appointed 8 party leaders as National General Secretary, including Vinod Tavre, Sunil Bansal, Smriti Irani and Biplab Kumar Deb. The party also named new heads of its various morchas

0: আলাপ অনুরাগ। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শাখাত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 9:30 বজাত প্ৰচাৰ হৈ আছে আলাপ অনুৰাগ। অসমৰ বৰেণ্য শিল্পীসকলৰ কৰ্মজীৱনৰ আধাৰত ৰচিত এই ধাৰাবাহিক প্ৰামাণ্য অলেখ্যালানীৰ ৰচনা আৰু প্ৰযোজনা অজয় কুমাৰ বৰাৰ।
1: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক, অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
2: Our voice gets you heard everywhere.
1: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
2: 6900453528।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
4: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচকঃ যতীন শর্মা। आदौ मुख्य वार्ताः। विकसित भारतस्य दिशि सार्वजनिक क्षेत्रस्य बैंकेषु तत्सम्बद्ध परिष्काराणाम् अथ भाविस्वरूपस्य च समीक्षायै प्रशासनम् उच्चस्तरीय समितेः निर्माणं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य उक्तवान् यत् मोदी प्रशासनेन स्वातन्त्र्य दिवसात् पूर्वम् ISI इत्यनेन समर्थितं शाहजाद भट्टी आतंकी जालं ध्वस्तीकृतम्। शिक्षामंत्री प्रह्लाद जोशी निर्धारित परीक्षा कार्यविधेः कठोरतया अनुपालनं सुनिश्चेतुं अधिकारिभिः सह उपवेशनं कृत्वा निर्देशान् प्रदत्तवान्। भारतेन स्वीये अध्यक्षतावसरे ब्रिक्स सहयोगे जनकेन्द्रिता मानवता प्रधाना च दृष्टिः पुनः प्रकटिता। अपि च BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धा नवदिल्ल्यां प्रारब्धा। भारतस्य MR अर्जुन हरिहरन अंसाकरुणन इत्येतयोः पुरुषयुगलं द्वितीय चरणे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विकसित भारतस्य लक्ष्य प्राप्तये सर्वकारेण शीघ्रमेव वित्तकोष क्षेत्रे काचित् उच्चाधिकार समितिः निर्मास्यते। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा अद्य नवदिल्ल्यां द्विदिवसीय सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृत्वा एतत् घोषितवती। सा प्रतिपादितवती यत् एषा समितिः विविध विषयान् विचार्य वित्तकोषीय परिष्काराणां भाविदिशं निर्धारयिष्यति। वित्तमन्त्रिणा आशा प्रकटीकृता यत् अस्मिन् सम्मेलने सञ्जातानां परिचर्चानां निष्कर्षाः वित्तकोषाणां भाविभूमिकायाः विषये संस्तुति निर्माणे च समित्यै महत्वपूर्णान् दृढपरामर्शान् प्रदास्यन्ति। सा न्यगादीत् यत् भारतीय वित्तकोषाः सम्प्रति सुदृढस्थितौ सन्ति, यत्र अनुत्पादक परिसम्पत्तयः स्वकीय न्यूनतमस्तरे वर्तन्ते। या स्थितिः अग्रे परिष्काराणां कृते दृढाधारं प्रदास्यति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू

0: कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में दो अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Union Home Minister Amit Shah today highlighted that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti Network ahead of the Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said the security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. He underlined that substantial recoveries, including IEDs, grenades bearing Pakistan Ordnance Factory markings, pistols, live cartridges and CCTV cameras used for espionage were made from the ISI-funded group. Mr. Shah added that the network was involved in several terrorist activities. The government has approved 31 more applications under Electronics Components Manufacturing Scheme with projected investment of 7,877 crore rupees. These approvals are expected to generate over 9,500 employment opportunities. These applications have come from 10 states, including 7 from Tamil Nadu and 6 each from Maharashtra and Haryana. Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishno, handed over the approvals to the applicants at a function in New Delhi. The applicants are related to the manufacturing of projects, including acetylene black, speakers and microphones, optical transceivers, capacitors and coils. BJP National President Nitin Naveen today announced the new team of national office bearers of the party. Mr. Naveen has appointed 13 national vice presidents, including Vasundhara Raja Sindhya, Tirath Singh Rawat, Ram Madhav, Bajayant Jay Panda, Sardar Manpreet Singh Badal and Rekha Verma. Union Minister and BJP leader Piyush Goyal has been appointed as the National Treasurer of the party. B.L. Santosh has been appointed as Organizational National General Secretary. Mr. Naveen has also appointed 8 party leaders as National General Secretary, including Vinod Tavre, Sunil Bansal, Smriti Irani and Biplab Kumar Deb. The party also named new heads of its various morchas, including Dr. Himang Joshi as the Yuva Morcha President, Roop Kumari Chaudhary as Mahila Morcha President and Bansilal Gurjar as Kisan Morcha President. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi has congratulated the newly appointed national office bearers of the party and those who have been given various responsibilities. Education Minister Prahlad Joshi today held a meeting with the Secretary Department of Higher Education, DG of the National Testing Agency and other senior officials in New Delhi. During the meeting, the minister directed that strict compliance be ensured of the established exam protocols.

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
2: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
3: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
1: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
4: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने

0: के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
3: भारत सरकार में सेवानिवृत्ति या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। द रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट

0: संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या